0: जैसा मैसेज हो गया जो वो फोन आया
1: करीब
0: प्रॉमिसिंग योर फ्यूचर सो देयर कैन बी मेनी सरप्राइजेस इन बिजनेस व्हिच इज इन द वर्क्स.